0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6:00 হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण

0: के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी ने कई आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को से शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is

0: হোটেলত দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 2025 চনত 5,550 আৰু 2026 চনত 4,500 প্ৰাথমিক শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক সুৰঞ্জনা সেনাপতিয়ে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ালৈ এই উদ্দেশ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যসহ দেশৰ মুঠ 16খন ৰাজ্য আৰু 3খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পৰ্যায়ক্ৰমে এছ আই আৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুংখানুপুংখ সংশোধন তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই পৰ্যায়ত অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, ছিক্কিম, ওড়িশা, ঝাৰখণ্ড, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তৰাখণ্ড, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, দিল্লী, চণ্ডীগড়, দাদৰা নগৰ হাভেলী আৰু দমন আৰু দিউ সামৰি লোৱা হ'ব। সমগ্ৰ দেশতে ভোটদাতাৰ সঠিক আৰু শেহতীয়া তথ্য সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। জনসাধাৰণৰ মাজত পৰিৱেশ সচেতনতা, বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু জলবায়ুৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত জীৱনৰ বাবে জলবায়ু মহোৎসৱ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱ কাইলৈ অন্ত পৰিব। য'ত আছে নদী, বনাঞ্চল, পৰ্বত, উপকূল আৰু মহাসাগৰ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আৰু আন্তঃক্ৰীড়াশীল শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, বহন ক্ষমতা আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে সচেতনতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত যোৱা নিশা হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰমশালাত অনুষ্ঠিত এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পাঞ্জাব কিংছক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে 201 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 19 অভাৰ আৰু 5টা বলত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 205 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত।
1: আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মৈ ফরহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों

0: बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ

0: संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना, पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE so Sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope.

0: दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will

सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरंग। 1:40 पर कार्यक्रम होगा तरन्नुम।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत शफकत अमंत अली की आवाज में यारियां फिल्म से। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए वजीर फिल्म से यह अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए तुम्हारी सुल्लू फिल्म से ये अगला गीत गुरु रंधावा की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, जब वी मैथ फिल्म से आवाज है मोहित चौहान की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शिवाय फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की, जिसके बोल लिखे हैं सायद कादरी ने और संगीत से सजाया है मिथुन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

हमारे अगले कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शनिवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम मछली से कवाली।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गुंजन। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब पेश कर रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अब सुनिए माँ बहन और बीवी फिल्म से ये अगला गीत, आवाज है शारदा की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म से यह अगला गीत, आवाजें हैं मुकेश और साथियों की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। सुनिए ये अगला गीत काजल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अब सुनिए कार्यक्रम का यह अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नया दौर फिल्म से।

0: कुछ ही पलों में सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलो

हर्ष पर सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आशीर्वाद फिल्म से मन्ना दे की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इम्तिहान फिल्म से आवाज है लता मंगेशकर की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में सुनिए यह अगला गीत आरती मुखर्जी की आवाज में मासूम फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत कति पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में अब सुनिए सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में ये अगला गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए बॉम्बे जयश्री की आवाज में, रहना है तेरे दिल में, फिल्म से।

इस गीत के साथ सबलंग कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से, मीडिया वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडिया वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और ध्यान फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब पेश है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गुजारिश फिल्म से ये गजल, आवाज है दिलीप कपूर की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में साद की फिल्म से यह अगला गजल।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम में अब सुनिए टुगेदर फिल्म से ये अगला गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में रॉयल सिलेक्शन एल्बम से।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुना आपने ये खूबसूरत सा गजल। इसी के साथ तरन्नुम कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में सुनेंगे बारी बारी से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindro Boshu elected as new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton,

0: cities, including Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru and Chennai. On increased fuel prices, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that as the world battled rising fuel costs after the West Asia conflict, India stood apart. In a social media post, the Union Minister said while several countries witnessed petrol and diesel hikes ranging from 20 to nearly 100%, India limited the increase to just plus 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade today. The Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं

0: ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।

0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी

0: संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत झील के उस पार फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में पाकीज़ा फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत विधाता फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये अगला गीत पेन गेस्ट फिल्म से।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिद्दी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सावन भादो फिल्म से।

चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग।

चटक हट तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला

बोल कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस तक

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में।

इस गीत के साथ गीती का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपके खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अगर बचपन सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है, जहां वह सिर्फ बोलना नहीं जीना सीखता है। परिवार वह छत है जहां बचपन सपने देखते हैं, और वही नींव है जहां भविष्य खड़ा होता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाती है। इस दिन का उद्देश्य परिवारों की भूमिका और समाज में उनके महत्व को समझना है। इस वर्ष की थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, यानी परिवारों के भीतर और समाज में मौजूद असमानताओं के बीच बच्चों का शारीरिक और मानसिक कल्याण। बच्चों का स्वास्थ्य विकास अच्छे भोजन और शिक्षा के साथ

0: आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परिवारों में मौजूद असमानताएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो डॉक्टर MS तोमर जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के विकास के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है।
1: देखिए, परिवार का बहुत ज़्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। सबसे पहले देखिए, परिवार का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, बड़ा क्लियर कट डिफाइन किया गया है हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में, कि स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व एवं संस्कार है संयुक्त समूह परिवार है। अर्थात प्रेम, सुरक्षा, जिम्मेदारी और संस्कार से जुड़े लोगों का समूह ही परिवार है। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि उस परिवार में ये सारी चीज़ें है या नहीं है। जैसे प्रेम है, सुरक्षा है, एक दूसरे को सिक्योरिटी फील होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम वो हमें क्रिएट करना है। जिम्मेदारी, हर किसी की एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोग कितना निर्वहन कर रहे हैं। और संस्कार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों में जो हम संस्कार देते हैं वही जो हम बिहेव करते हैं वही संस्कार बच्चों में जाते हैं। तो जितना फैमिली का अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं उतना ही बच्चा के विकास पे असर पड़ता है परिवार का।
0: किया जी, आपसे जानेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे करें।
2: जी देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनको अपने माँ से एक जुड़ाव होता है और वो अपने माँ के साथ रहता है, तो जब बढ़ता रहता है तो प्यार पनपता है। सो जैसे आज आपका टॉपिक है लव, सो उसमें भी बच्चा अच्छी तरह ही पनप जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ को या पापा को उनको जादू की झप्पी दे के या उनके साथ बैठ के उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके उनको पास रखना होता है। जितना पास रखेंगे, जो फिज़िकल टच होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मानसिक एज वेल एज इमोशनल। अब हम आते हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन, जो जिन्होंने रिसर्च किया और एक बुक भी पब्लिश किया, 5 Love Languages ऑफ किड्स। उसमें क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया कि 5 Love Languages, जैसे कि ना कुछ बच्चों को गिफ्ट मिलना बहुत पसंद है, वो फर्स्ट हो गया उसका लव लैंग्वेज। फिर किसी को तारीफ करना पसंद है तो वो हो गया सेकेंड लव लैंग्वेज। फिर हो गया फिजिकल क्लोजनेस। फिर हो गया है कम्युनिकेशन, कैसे हम बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। फिर हो गया है ख्याल रखना। तो ये 5 चीज़ें हो गए। तो जिस बच्चे का माँ को पता लग जाता है कि उस बच्चे का कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा फिफ्थ, उस हिसाब से बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब वो तो बचपन की बात हो गई। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाने लगता है बच्चा, तो उसमें उसके पीयर्स आ जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, तो माँ को पापा को सारा टाइम एक बच्चों को एक माहौल देना है, एक उनको सेफ्टी नेट देना है कि बच्चे तुम्हारे लिए हम सदा पास में रहते हैं, तो बच्चा खुल के बात करेगा। ऐसे करते करते जब बचपन से माँ बाप का सपोर्ट रहता है, बच्चा जब बड़ा होता है तब उनका अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ आता है उनका पढ़ाई का उच्च होने का इच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस, फिर सब कार्य में उनकी मन की इच्छा भी बड़ी होती है। फिर उनको स्पोर्ट्स में डालते हैं, फिर स्पोर्ट्स से माइंड खेलता है। तो ऐसे करके मेंटल विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है,
0: मतलब मेंटल सिक्योरिटी मेंटली स्ट्रांग करती है बच्चों को।
2: एग्जैक्टली, तो एक बचपन से ही शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना नींव।
0: जी,
2: तो नींव से ही स्टार्ट करना होता है।
0: जी, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
0: हेलो, नमस्कार जी, आपका
3: नमस्कार
0: नाम?
3: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
3: पहले इस सबसे बेहतरीन परिवार को मैं बधाई देती हूँ।
0: जी धन्यवाद,
2: थैंक यू।
0: रेडियो डॉक्टर आपका परिवार है और आप भी इस रेडियो डॉक्टर का हिस्सा हैं।
3: मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा सबसे प्यारा परिवार यही है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक तो मैं रेडियो फ्रीक हूँ, रेडियो में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ, टीवी मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर आपका प्रोग्राम मैं एक महीना कनाडा गई थी, बहुत मिस किया। तो इसलिए आप सबको बहुत बधाई।
0: और आपने मिस करा, अगर आप लोगों का कॉल नहीं आता तो शायद हम भी आप लोगों को मिस करते हैं। आप हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेकर आए। तो बताइए मिसेस बेदी, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया ना 5 प्यार के स्टेप्स

0: बच्चों के लिए।
1: हाँ
0: बच्चों
1: जी
0: की ग्रोथ आजकल इसलिए रुक रही है कि एक तो पेरेंट्स की ही आपस में ज्यादा अच्छे से नहीं रहते,
1: सही
0: क्योंकि
1: में
0: जॉब
1: बिल्कुल
0: में काफी डिफिकल्टीज आती हैं। अगर पेरेंट्स ही झगड़ेंगे तो बच्चे की ग्रोथ बहुत खराब हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल
0: दूसरा, फैमिली में अब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, सबसे बड़ी ये कमी आ गई है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़िया ही नहीं।
2: बहुत
0: जी
2: अच्छा
0: उनकी
2: पूछा आपने
0: गाइडेंस,
2: मैडम, क्वेश्चन करें तो शायद ज्यादा
0: हाँ
2: लोग।
0: बस क्वेश्चन मैं आपको यही
2: जी
0: कर रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं है मेरी आपसे, बस यही
2: जी
0: रिक्वेस्ट है कि आपका मैसेज दुनिया जाने
2: जी
0: और आपका मैसेज दूर दूर तक पहुंचे कि फैमिली बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर फैमिली कोई फैमिली नहीं है।
1: जी हाँ, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं
0: हाँ
1: कि
0: तो मैं आप
1: फैमिली लोगों
0: सबका,
1: कितनी इम्पोर्टेंट है और फैमिली में रहकर बच्चों का विकास कितना ज्यादा जरूरी है।
0: हाँ जी, तो मैं, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है पर मैं थैंकफुल हूँ आपकी कि
2: थैंक यू,
0: इतना बढ़िया आप लोगों का कंसेप्ट है जो आज का है।
1: जी हम भी
2: थैंक
1: आपके लिए
2: यू,
1: बहुत थैंकफुल, आप हमारे साथ, आपने कॉल किया हमारे साथ जुड़े
0: हाँ
1: रेडियो डॉक्टर में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तोमर, जैसे कि अभी केया जी ने कहा कि मानसिक विकास बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ऐसे में अगर हम बात करें शारीरिक विकास के लिए, तो बच्चों का शारीरिक विकास कैसे करें कि बचपन से ही उनकी ग्रोथ सही हो?
2: देखिए हमारे एक कहावत है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, कैसा बनेगा, वो उसके पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो पूरी फैमिली को इस पे ध्यान देना है। हम लोग बच्चा पैदा होने के बाद सोचते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं, कई बार तो 6 महीने पर बच्चा हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। बल्कि जब से बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन से आपको उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है, क्योंकि आपका जो हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, एक गोल्डन 1000 डेज कहते हैं हम इसको, 1000 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मदर का आपको पूरा ख्याल रखना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी डाइट को अच्छा रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा विकास बच्चे का पेट के अंदर ही हो जाता है। जो बच्चे के अंग बनते हैं, बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसी को आपको कैरी ऑन करना है।
3: इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला ना, तो ये बच्चों का घर में एक माहौल अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना अपने पेरेंट्स से अब्सॉर्ब कर लेते हैं उनकी परेशानियाँ, जैसे कि आर्थिक परेशानियाँ हुए या नॉर्मल कोई भी ऑफिस रिलेटेड हुआ या मानसिक परेशानी, तो बच्चे वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनके बिहेवियर में आता है, जैसे वो झल्लाहट करते हैं या टीनेज टैंट्रम्स करते हैं, कुछ
2: बिल्कुल,
3: भी
2: बिल्कुल
3: पिटफुल। तो उस वजह से बच्चों को देखना होगा कि भाई माहौल अच्छा है तो ही वो अच्छी तरह कर पाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: माहौल से हम भी इस माहौल को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: जी

0: खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा। घर घर तभी लगता है जब परिवार में सभी सदस्य हों, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। जैसे कि एक कॉलर ने पहले हमसे लाइन पे कहा था कि आजकल माता पिता वर्किंग है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे में बच्चों के वेलबींग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक ग्रोथ सही हो, वो हेल्दी हो? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं हेल्दी है, लेकिन बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते, तो क्या किया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्दी होता क्या है बेसिकली। तो अगर आप WHO की डेफिनेशन को देखें तो इसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। तो कोई बच्चे का वेट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको इमोशनली कितना स्ट्रांग है बच्चा, सोशली वेलबींग है कि नहीं उसकी, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा, अभी जो हमारे कॉलर ने एक क्वेश्चन उठाया था कि पेरेंट्स घर में झगड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, हम जो पेरेंट्स को समझाते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके घर में आता है, तो मान के चलिए आपके घर में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है एग्जैक्टली आप कैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बाकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं, वो सारा आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। और जाने अनजाने में है, जो ऑब्जर्वेशन से बच्चा सीखता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। आपको झगड़ना है वो नेचुरल, आप अकेले में भी झगड़ सकते हैं, आपको एंगर को मैनेजमेंट करना है, और जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपका बच्चा वो करेगा। बाकी मैडम आप बताइए, कुछ ऐड कौन करना चाहें इसमें?
0: हाँ किया जी, आप बताइए कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए परिवार का क्या रोल रहना चाहिए, कितना अपनापन उनको देना चाहिए?
2: जी देखिए, बचपन से ही बच्चों के साथ रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है, उनके साथ खेले, माँ बाप खेले उनके साथ, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको फील करवाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनको बचपन से ही के ग्रैटिट्यूड का फीलिंग दिलवाना चाहिए कि जी थैंकफुल रहे बड़ों से, या जिनसे भी तुम मिल रहा है तुम्हें थैंकफुल रहे। फिर हम आते हैं कि थोड़े जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब जब वो स्कूल जाते हैं, तब उनमें एक पीयर्स प्रेशर के बोल भी बोल सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, उनके में उनमें एक अग्रेशन आता है, एंगर बिहेवियर आता है, उस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि शांति से चीज़ों को सुलझाएं। वो कैसे कराएंगे? वो पहले तो जब देखेंगे कि एटमॉस्फेयर अगर बिगड़ रहा है, तो वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपने से ही संभल जाए। उसके बाद उनको समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से समझाएंगे कि ये उचित है ये नहीं उचित है, ऐसे करके। उसके बाद एक दैनिक दिनचर्या पर टिके रहे, ताकि एक डिसिप्लिन लाए बच्चों में, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होएगा, माइंड में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, उससे

0: बच्चों का विकास में भी परिवर्तन आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना। उसके बाद जो परिस्थितियों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिर से ना आए, ये माँ बाप को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें, ये नहीं कि उनको धुतकारे। क्योंकि जैसे माँ बाप, जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ बाप जैसे करते हैं वो बच्चे इम्बाइब कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल है कि माँ बाप झगड़ रहे हैं, इस पर चर्चा विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ठीक पथ पे जाना है। इसीलिए उन बच्चों के साथ समय बिताएं, फिर उनको जब बाहर ले जाए फिर प्रोत्साहित कीजिए कोई भी एक्टिविटीज़ में, जैसे गाना हुआ, उसमें माइंड का बहुत ही असर होता है, फिर योगा हुआ, फिर मेडिटेशन हुआ, इन सब चीज़ों में जो नर्व्स होते हैं उनको सूदिंग मिलता है। फिर प्रैक्टिस करना चाहिए कि एकांत कैसे रहा जा सकता है, उसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिर एग्ज़ाम्स में परिवर्तन आता है, ऐसे करके शुरू से ही बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट में ध्यान रखे पेरेंट्स।
2: लेकिन आजकल जहाँ सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते खेलने के लिए,
0: क्योंकि उनके होमवर्क भी तो बहुत आते हैं और सारा इंटरनेट से ही आता है।
2: जी, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनका शारीरिक विकास कैसे करें? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
1: देखिए, आजकल के खास करके न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों ही माँ बाप वर्किंग हैं, बहुत मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। खास करके बच्चों को गुड क्वालिटी टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है, और टाइम पेरेंट्स दे भी रहे हैं तो उसमें क्वालिटी टाइम नहीं, एंगेजमेंट बच्चे के साथ बहुत कम हो रहा है। स्क्रीन बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर एक क्लियर कट गाइडलाइंस कि 2 साल से पहले, 18 महीने से पहले बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वो खाना नहीं खाता,
0: हम मम्मी को लगता है यस,
1: तो उसको खाना खिलाने के लिए अक्सर मना करते हैं कि आपको बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है। लेकिन मम्मी कहती है सर मैं सिर्फ खाना खाते समय दिखाती हूँ।
0: एग्जैक्टली,
1: आपका बच्चा कोई डस्टबिन नहीं है कि आपने मोबाइल के थ्रू उसका मुंह खोला और अंदर खाना डाल दिया। वो खाना उसको हजम भी नहीं होगा, उसको कोई फायदा भी नहीं होना, वो कुछ सीख ही नहीं रहा उस खाने से, उसको टेस्ट को नहीं ले रहा बच्चा, सिर्फ मुंह में अंदर जा रहा है। तो कभी भी बच्चे को शुरुआत वहीं से होती है 5-6 महीने से, कि बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो स्क्रीन टाइम के लिए गाइडलाइंस बड़ी फिक्स हैं। आपको 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम आपको 1 आवर तक आपको देना है। 5 साल से ऊपर बच्चे को 1 to 2 आवर्स आप दे सकते हैं, बट उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है, स्क्रीन और डिजिटल कंट्रोल, जो पेरेंटिंग कंट्रोल है वो आपको रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। इतना सारी समस्याएं आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, खास करके हमारे क्लिनिक्स में बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, जिनका न केवल स्क्रीन की वजह से बल्कि जंक फूड को भी आपको डिस्कस करेंगे बाद में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एग्जैक्टली टाइम से आप सलाह लें कि कैसे आपको आगे बढ़ना
2: देखा जाए तो बचपन से हमने ही उनको आदत फोन देकर एक आदत डाल दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: लगता है कि बाहर जाएंगे इस अच्छे एक जगह बैठे हैं फोन देख लें। तो लेकिन इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि बच्चों को फोन ना दें?
1: बिल्कुल डिजिटल फ्री जोन आपको डिक्लेयर करना है घर में, कि जैसे आप जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ डिजिटल बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए। आपका बच्चों का बेड है जहाँ पर आप सो रहे हैं वो बिल्कुल डिजिटल फ्री होना चाहिए, वहाँ अलाउड ही ना होना चाहिए। 1 घंटे पहले बिल्कुल आपको मोबाइल और टीवी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छा लगता है बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते हैं।
2: और बच्चों का जो खाली टाइम है उस पर फोन देने की बजाय बच्चों को बाहर वर्कआउट के लिए ले,
1: दिस इज द ओनली वे। अब बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, ये तो मानता ही नहीं है, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जितने बच्चों को आप बाहर स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट करेंगे बच्चा आपका मोबाइल छुएगा तक नहीं, प्रॉपर टाइम दीजिए स्पोर्ट्स के लिए।
0: लेकिन आजकल माँ बाप ही इतना फोन पे रहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं माँ बाप जो गेमिंग में आते हैं
1: बिल्कुल,
0: और फिर बच्चे इतने छोटे होते हैं 2-3 साल से वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब एज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हम थेरेपी देते हैं बच्चों को, प्रॉपर थेरेपी।
2: उसमें क्या होता है थेरेपी में?
0: देखिए, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज, न्यूरो इज माइंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक हम जो बात करते हैं अपने माइंड के साथ, और प्रोग्रामिंग हम जैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं इतने सालों से।
1: Exactly.
0: ठीक है। नाउ न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, कुछ ये टूल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस है जिसके माध्यम से हम एक पेशेंट्स को थेरेपी से ठीक करते हैं। इसमें हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उससे हम रिलैक्स करवाते हैं पेशेंट को। उसके बाद एक्सरसाइजेस हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद वो बच्चा एक्सरसाइजेस थ्रू माइंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो कि ना थीटा टाइम में होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम में प्रैक्टिस कर करके वो

0: ठीक होते हैं, बट ये भी पेरेंट्स का ही हाथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि एक रूल बनाना चाहिए, लेकिन जनरली पेरेंट्स बनाते नहीं है क्योंकि उनके कन्वीनियंस पे चलता है सब कुछ
1: जी।
0: तो अगर वो पेरेंट्स रूल बना दे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो एकदम बच्चा ठीक हो जाता है। तो जैसे
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें, हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका रोल क्या है, उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली। उन्हें क्या लगता है कि अच्छी बुक्स दे देना, अच्छे उनके लिए मोबाइल या कुछ गेमिंग जो आजकल आते हैं वो दे देना, वो पेरेंटिंग नहीं है।
0: वो एग्जैक्टली
2: आपको ये सीखना है कि आपका रोल एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का रोल इतना होता है कि बच्ची को अच्छी लाइफ जीना कैसे सिखाना है, वो आपको आना चाहिए।
1: देखा जाए तो अगर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आते
2: हैं, बहुत सारा फर्क पड़ रहा है इसका।
0: आप मानेंगे नहीं, बच्चे
2: 90% यस यस 90% प्रॉब्लम्स बच्चों की है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है, जो कि मैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैडम आपने भी देखा होगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वेपिंग में आ जाते हैं बचपन से, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं, बट एक बार अगर आ गए तो बस लाइफ तो गई।
1: तो बच्चों में एंग्जाइटी हो गई, वो शायद लोनलीनेस में चले जाते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ सोशल होना पसंद नहीं करते।
0: उसके लिए भी हम NLP के थ्रू उनको थेरेपी देते हैं, तब वो सुधरते हैं। अदरवाइज और देखा गया है कि ये जो इंडिया में मानसिक अवस्था है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो 5 करोड़ किड्स दे आर अफेक्टेड, पीड़ित है, और 80-90% जो पेशेंट्स हैं, मतलब प्रॉब्लम है जिनमें, वो चिकित्सा ही नहीं करवाते, कुछ सोशल स्टिग्मा के वजह से, और कुछ जानने ही नहीं खुद पाते हैं कि
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये सारा स्टार्ट होता है यही एग्रेशन से, फिर एंगर से, डिप्रेशन, बिहेवियर डिसऑर्डर, और घर से ही तो शुरू होता है ये पहले।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से, ये लिखते हैं नमस्कार, बच्चों को प्रेरक कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा ना स्कूलों में हो रहा है ना घरों में, तो क्या इसके लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता? डॉक्टर तोमर पहले आप बताएं इस पे।
2: देखिए
1: शारीरिक पूछ रहे हैं कि शारीरिक विकास
2: हाँ
1: कैसे
2: हाँ
1: करें।
2: जी हाँ जी, ये कहानी पढ़ने से शारीरिक विकास होगा ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली बच्चे की मेमोरी अच्छी बनती है जब कहानी सुनते हैं, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। अक्सर जो दादी माँ की कहानियाँ हुआ करती थी वो एक मैसेज भी देती थी कहीं ना कहीं, तो वो जो हम वैल्यू सीखते हैं परिवार से, तो वो कहानी के थ्रू ही हमें सिखाया जाता था। शारीरिक विकास के लिए तो आपको बच्चे को अच्छा खाना देना है, हेल्दी डाइट देनी है, बच्चे का जो खेलने कूदने का समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, और स्क्रीन से आपको दूर रखना है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो स्क्रीन से हो रहा है बच्चों
1: को। स्क्रीन टाइम से बचने के लिए ही बच्चों को शायद कहानी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रेरित कैसे करें। हाँ, तो इस पे किया जी, आप क्या कहेंगे?
0: जरूर, इससे जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे या सुनेंगे भी, माइंड को जाएगा वो आवाज़, तो सूदिंग इफेक्ट होगा नर्व्स में, ब्रेन के नर्व्स में होगा, और फिर वो बातों में फिर वो सब आता जाएगा, और फिर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक होता है बच्चों को, स्टमक एक होता है, वो पता लगता रहता है कि बच्चा ठीक से जैसे कि ना चल, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, ये सब मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं उससे पता लगता है। तो ये ज़रूरी है कि कहानियों के माध्यम से ही बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं सभी स्टूडियो में आए एक्सपर्ट और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून।
0: थैंक यू।
1: वो लिखते हैं स्कूल में इस विषय में क्या कोई कार्य हो रहा है, इनका कोई काउंसलिंग होता है क्या, कृपया बताएं। थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड। तो क्या जी आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि काउंसलिंग की
0: बात, ये तो होता है। हैप्पीनेस करिकुलम तो खूब ही चल रहा है आजकल, प्रधानमंत्री का जो भी है, कुछ करिकुलम्स है हर स्कूल में चल रहा है, तो स्कूल्स में करते हैं काफी लोग,
1: बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, शायद पेरेंट्स की भी होती है कि वो बच्चों के
0: साथ का तो होता है। पीटीएम मीटिंग्स हम हर समय पहुंचाते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं देवदत्त परसोलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू देवदत्त जी,
2: थैंक यू सो मच।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर।
1: मेरी दुनिया तू ही रे, हर माँ बाप को बच्चे को ये फील कराना ज़रूरी है कि मेरी दुनिया तू ही रे, जिससे एक परिवार में एक बॉन्डिंग दिखे। डॉक्टर तोमर, आप हमें बताइए कि बच्चे की बचपन से हर एज ग्रुप में ग्रोथ प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, क्या क्या हमें देखना चाहिए कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या कहाँ लैग कर रहे हैं, कैसे पहचाने?
2: देखिए, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी वेलबींग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज गोल्डन 1000 डेज, जो हम पहले भी आप डिस्कस किए थे। शुरू के 9 महीने का जो गर्भावस्था का समय होता है, और उसके अलावा जो 2 साल हैं, बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 90% उसी एज में हो जाता है। अक्सर हमें लगता है कि 2 साल के बाद बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा, उसका बुद्धिमान बन जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चे का, वो 2 साल तक ही डेवलपमेंट होता है, 90% हो जाता है या मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, दोनों पे ही, शारीरिक और मानसिक विकास पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से, गर्भ संस्कार जैसे कंसेप्ट आया था। जैसे आपने अगर सुना होगा, तो जैसे अभिमन्यु था, पेट में से सीख के आया था। ऐसा नहीं था कि कोई मैजिक हुआ होगा या कुछ सीख के आया होगा, दैट वॉज ए टोटली एपिजेनेटिस, मीन्स वो कंडीशनिंग इस तरीके से किया गया कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वो आपको 9 मंथ का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 9 महीने आपको मदर पर फोकस करना है, मदर को खुद अपने आप पर फोकस करना है, ताकि उसका बच्चा है अच्छे से ग्रो करे अंदर। आपको बहुत छोटी सी बात नहीं पता होगी, जो कि प्रूवर है बहुत सारी स्टडीज में, कि जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, एक सीजरियन बॉर्न बेबी होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है, उसका इम्यून सिस्टम, उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है। दैट्स इन प्रूवन थिंग। हमें इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि आजकल पेरेंट्स अक्सर फैमिली प्लानिंग करते नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती ही नहीं है, उसको कई सालों पहले से आपको अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप एक हेल्दी बच्चा समाज को दे सकें। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद देखते हैं कि शुरू का जो 6 महीने का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पीरियड में बच्चे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नींव भरती है वो भरती है, चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो। उस समय 2 चीज़ें होती है बच्चे का, एक तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चे को बाहर की बीमारियों से बचाना भी है हमको, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसको पहली वैक्सीन कहते हैं, वो है माँ का दूध। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। माँ का दूध केवल उसी समय पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि 100 साल तक के लिए, लाइफ लॉन्ग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं आज के टाइम में, जैसे कि एलर्जी है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी कैंसर्स हैं, इन सब से आपको बचाना है बच्चे को, तो सिंपल है कि बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मदर फीड, मीन्स माँ के दूध के अलावा आपको सपने में सोचना भी नहीं है कि कोई एक बूंद भी ऊपर से कुछ देना है। तो ये हमारा 6 महीने तक का टाइम हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिर से स्क्रीन अंदर आ जाती है, तो उससे वहाँ आपको बचाना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध आपको देना है, किसी और की माँ का दूध आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, अक्सर माँ क्या करती है कि उसको गाय भैंस का या डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देती है, तो उससे आपको बचना है। आप उसको खाना देना स्टार्ट करिएगा, माँ का दूध चलने दीजिए 2 साल तक के लिए, साथ साथ में उसको खाना देना स्टार्ट किए। तो इस तरीके से हम बच्चे को 2 साल तक डेवलप कराते हैं। उसके बाद फिर आपको हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मम्मी को बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, सबको शॉर्टकट चाहिए, इतने सारे बेबी फूड आ गए, इसकी इंडस्ट्री देख कितनी बड़ी हो गई बेबी फूड की, एंड देर ऑल प्रोसेस फूड, दे आर ऑल जंक फूड, एंड दे आर वेरी वेरी डेंजरस, दे प्रमोट ओबेसिटीज, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्शन होता है। अगर आपने कभी एक बार कुछ जंक फूड ले लिया, आपको घर का खाना बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वो जंक फूड कभी भी, क्योंकि बहुत हाई शुगर होता है उनके अंदर, बहुत हाई सॉल्ट होता है, और जैसे ही बच्चा वो खाना खाने के बाद फिर घर का खाना खाता है, तो उसको वो किक नहीं मिलती है, उसके ब्रेन में वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, तो बच्चा फिर घर में खाना खाता ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे बच्चा और बड़ा होता है, उसके बाद आपको बच्चे को जितना हो सकता है उतना प्ले टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जब स्कूल जाने लगे, तो आपको बच्चे को अच्छा प्ले टाइम देना चाहिए, इससे बच्चा स्क्रीन से ही बचेगा और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। बाकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैडम कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें इसमें?
3: जी ज़रूर।
1: जी बताइए कि जी कि कैसे बच्चों के, ये तो उन्होंने बताया डॉक्टर तोमर ने, शारीरिक विकास कैसे करें, आप हमें बताएं कि मानसिक विकास बचपन से बच्चे का कैसे करें कि जिससे वो बड़ा होते होते प्रॉपर उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाए।
0: हाँ जी, देखिए जैसे ही बच्चा आ गया, बाहर आ गया जैसे बच्चा, तो उनके पेरेंट्स को उनको पार्क में ले जाएं, फिर पार्क में जैसे जाएंगे तो पेड़ पौधों के साथ जब रहेंगे बच्चों, वो अलग ही एक नेचर से इंट्रोडक्शन होएगा बच्चों का। सो ऐसे करते करते थ्रू आउट एवरी डे एक पार्क का हैबिट बनाइए, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा, खेलेगा, नंगे पैर पार्क में चलेगा, ग्रास के साथ उसका ग्राउंडिंग होएगा, तो जो ग्रास के साथ उसका पैर में चलने से वो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। फिर बचपन से ही ट्राई करने के लिए कि योगा करें बच्चे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के रूप में नहीं, साइलेंस प्रैक्टिस करें, बोले कि थोड़ी देर शांत रहो। तो ये शुरुआत कैसे करेंगे, पहले 5 मिनट से करेंगे, एक हफ्ता 5 मिनट किया, 2 हफ्ता 10 मिनट किया, तो जब बचपन से ही करेंगे बच्चे तो उनका आदत लग जाएगी। फिर घर में देखेंगे कि प्रेयर्स हो रहे हैं, पूजा पाठ होता है, तो पूजा पाठ से भी शांति मिलती है, जो एसेंस का जो खुशबू आता है उसमें भी एक आराम मिलता है नसों को, नर्वस सिस्टम को। फिर हम आते हैं, जैसे मैं साइको न्यूरोबिक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, वो है हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे मैंने बोला, बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके साइलेंस प्रैक्टिस किया, फिर मेडिटेशन किया, फिर हाई लेवल पे गए, तो जब जब जितना आप मेडिटेशन करोगे, साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम कूल होएगा और आप झगड़ा नहीं करोगे बड़े होके। आजकल क्या होता है, रोड रेजेस होते हैं, रोड रेजेस में क्या होते हैं, झगड़ा अशांति शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज नॉर्मल, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए घर का माहौल एक उचित देने के लिए माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता
1: जैसे
0: है।
1: जैसे अभी आपने कहा कि कोई इंसिडेंट हो गया, झगड़ना शुरू करते हैं, हाँ, इसी से रिलेटेड एक मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, हाउ टू कॉम्बैट द टेम्पर टेंट्रम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट।
0: हाँ, इसमें मैं अच्छी तरह बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह थेरेपी में मतलब ठीक किया है कुछ बच्चों का। देखिए, जैसे ही बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, छोटा बच्चा भी बहुत हाइपर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे ही हाइपर हो जाते हैं तो एकदम पूरा माहौल शांत करते, ये नहीं कि पेरेंट्स उसी टाइम ही बच्चों को सब कुछ सीखते, नहीं, वो वेट करें, जब बच्चों का क्रोध शांत होएगा। देखिए, एक थॉट जब आती है वो थॉट शरीर में 3 घंटे से पहले नहीं जाती है, और वो थॉट शरीर में 60,000 से लेके 2 लाख तक थॉट्स पर डे एक इंसान को आता है। तो जब सोचिए, जब क्रोधित बच्चा या कोई भी क्रोधित जब होता है तो वो कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। तो इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि शांति से सुलझाए, पहले भी मैंने बोला कि कहानियों के माध्यम से उनको समझाए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाए, लेकिन समझाना ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर बाद।
1: लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी शांत रहना जरूरी है, कई बार होता है पेरेंट्स भी रिएक्शन कर जाते हैं, वो भी उनको डांटने लगते हैं। इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार और आभार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: जी, मेरे 4 सीधे साधे भोले भाले सवाल हैं और एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश।
1: हाँ जी बताइए।
3: तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक मुकम्मल परिवार किसे कहेंगे, क्योंकि कई फैमिली में 2 ही लोग रहते हैं, कई में 4 रहते हैं, कई में 8 रहते हैं, कई 15-20 भी रहते हैं, कुटुम्बदारी भी अच्छी खासी रहती है, तो आप एक कम्प्लीट परिवार की परिभाषा मतलब किसे कहेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि होता है कि बच्चे माँ बाप से तो बिल्कुल बिंदास बेखौफ होके बात करते हैं, कोई भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिमांड करनी है, और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको उनके सीनियर से पुलिस मिलते हैं, तो वहाँ वो भीगी बिल्ली कायर बुजुर्ग बन जाते हैं, तो उन्हें मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग किया जाए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हाथ पैर छूने चाहिए, उन्हें ब्लाइंड फॉलो करना चाहिए, उनके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। हम बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ सीनियर्स में होते हैं, उनकी मजबूरी का शराबत का फायदा उठाते हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि संयुक्त परिवार जो है वो एकांकी परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील परिवर्तित, तो इसकी वजह क्या है? और पांच में आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी गुजारिश आप सबों से कि जैसे बड़े बुजुर्ग प्यार के भूखे हैं ना मान सम्मान के, ऐसे बच्चे भी हैं प्यार के भूखे मान सम्मान के, तो उन्हें मान सम्मान देना और उन्हें प्यार करना सीखे। क्या कहेंगे आप, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: तो डॉक्टर तोमर, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले पूछा था कि अच्छे परिवार की डेफिनेशन क्या है, किसे कहेंगे?
2: देखिए शायद आपने
1: जैसे हमारा हाँ इंटरनेशनल
2: हमने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि परिवार क्या होता है। बेसिकली जहाँ स्नेह संरक्षण उत्तरदायित्व और संस्कार होते हैं, संस्कार में जैसे आपने बोला वो सब कुछ आ जाता है। जब संस्कार की बात करते हैं तो जैसे बाहर बच्चे जाते हैं तो वो बिगी बिल बन जाते हैं, या वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारे एक उसमें भावनात्मक उसमें आती हैं। ये हम यही वैल्यू हमें सीखनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें सिखाना ये परिवार की जिम्मेदारी होती है। दूसरा आपने बोला कि रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों की भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए होता है जितना बड़ों को चाहिए होता है, तो वो बच्चों को हमें सिखाना है कि उन्हें कैसे करना है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा हम करेक्ट नहीं करें, दिन भर हम बच्चे को करेक्ट करते रहते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बल्कि उसको जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उससे आप सवाल करिएगा, ताकि उसका अपर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, जो ब्रेन में जो कॉर्टेक्स होता है उसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज क्या है कि दिन भर बच्चा वही सुनता है आप ये मत करो आप वो मत करो, तो उसका भी स्पाइन लेवल पर रिप्लाई आने लगता है फिर वो, तो उस तरीके से करना है। संयुक्त परिवार का होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इंसान आजकल जो है वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब ऊंचाइयों पर जा रहा है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वो आसपास की चीज़ें फिर दिखाई नहीं देती हैं, तो वही हो रहा है। ये सही समय कि हमको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहिए, हमको अपने आसपास देखना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए, इससे हमारी सोशल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों से मिलना चाहिए। बल्कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रोज में तो हालत ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले को जानता ही नहीं है कि वो कौन रहता है, इससे डेफिनेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ये सोशल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
1: किया जी, जैसे इन्होंने ये भी पूछा था कि बच्चे घर में तो बिंदास डिमांड करते हैं लेकिन बाहर जाकर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो ऐसे में उनका मानसिक विकास कैसे किया जाए?
0: देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि बाहर दिखाना है कि हम बहुत ही सही है, और घर के अंदर वो अपने आप को नॉर्मली बिहेव करते हैं, और उनका नॉर्मल है कि वो जिद करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ देयर नॉर्मल थिंग। बट बाहर तो दिखाना ही है कि हम इतने अच्छे हैं, तो ये सब कुछ शुरुआत होती है वो घर से ही, जैसे आपका घर का फैमिली का प्रोग्राम।
1: नहीं, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हाँ, वो बाहर नहीं बोलते।
0: हाँ,
1: घर में तो बोलते रहते हैं लेकिन बाहर बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, तो वो बाहर भी जैसे आजकल होते छोटी फैमिलीज हैं, ठीक है, बच्चे पोजेसिव हो गए, रिजर्व हो गए, बाहर उतने सोशल नहीं है, तो उनको सोशल कैसे बनाया जाए, वो ये पूछना चाह रहे हैं।
0: हाँ, तो उनकी पर्सनालिटी क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं, वो बच्चों को डालना चाहिए। फिर काउंसलर्स होते हैं, उनके थ्रू से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। फिर हमारे जैसे NLP मास्टर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके थ्रू से हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर हेल्प चाहिए कि अगर देख रहे हैं कि बच्चे कंटिन्यूसली ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो घर पे नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोफेशनल उनको हेल्प लेना चाहिए।
1: लेकिन बच्चों को रिजर्व टू सोशल बनाने के लिए पेरेंट्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं?
0: पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे ना, स्कूल के टीचर्स से मिल के, उनसे बात करके, उनसे डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग लेके, फिर वो भी इन्वॉल्व होंगे और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल हेल्प लेंगे।
1: एक श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। दोनों डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार ठाकुर
1: साहब। नमस्कार जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न ये था, मैंने अपनी बिटिया के बारे में पूछना था।
1: जी बताइए।
4: जैसे मानसिक रूप का उससे आज ये प्रोग्राम था, तो ये मानसिक होता है या ऐसा? जैसे बिटिया हमारी 24 साल की है, तो उससे पहले भी स्कूल से कि ये ऐसे हवा लग गई करके हो जाती थी, जैसा मोर्चित हो जाती थी, ये बेहोश टाइप की
2: जी,
4: या कभी कुछ जैसे डेथ केस हुए थे तो उसमें भी वो बेहोश हो जाती थी, जैसे कभी पूजा पाठ करती है तो कभी कभी उसमें उसको हो जाती है, बेहोश टाइप की हो जाती है, कि तब मानते हैं ना ये घर का कोई ऐसा कुछ दोष हो या कुछ ऐसा, या कुछ हवा या कुछ ऐसा, तो ये मानसिक होता होगा या क्या होता होगा, इसका तो समझ में नहीं आया।
0: मैं बताती हूँ, ये दो

0: तो आपके बेटे को थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प चाहिए इस वक्त, ताकि वो इस चीज़ से निकल आए. जैसे ही वो निकल आएंगे फिर वो घर के माहौल में फिर संभल जाएंगे, बट अभी के लिए आपकी बेटी को थोड़ा सा डॉक्टर का या किसी का, काउंसलर का, साइकोनोरोबिक्स होए या साइकोपैथ होए, उनसे हेल्प चाहिए.
1: इस पर डॉक्टर, इस पर क्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, कुछ बच्चे होते हैं वो इमिडिएटली हैंडल कर लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: कुछ होते हैं उसको एक दिन सोचते रहेंगे, कुछ होगा हफ्ते भर सोचते रहेंगे, कुछ महीनों सोचते रहेंगे,
0: हाँ जी,
1: उसकी वजह से वो चीज़ सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाती, ना ही उसका रिजल्ट मिल पाता.
0: नहीं,
1: तो ऐसे में तो उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से क्या करना चाहिए?
0: देखिए, कुछ तो अपने में ही होता है, कुछ तो तूफानी बच्चे होते हैं, कुछ स्लो डेवलपमेंट करते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं. लेकिन हम उन बच्चों को डिफरेंट, जैसे कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू टीचर्स उनको हेल्प करेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि टीचर से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके उन बच्चों को नॉर्मलाइज किया जाए. जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे ठीक हो रहे हैं और नॉर्मल रिजल्ट्स आने लगे.
1: इस पे डॉक्टर तोमर आप क्या कहेंगे?
2: मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हर किसी के पास ना तो साइकेट्रिस्ट है ना ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि आप देखें छोटे शहरों में तो हमें बेसिक किसी भी चीज़ के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. ये सारी चीज़ें आज हम इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों ने वो जो हमारा पुराना कंसेप्ट था वो खो दिया. तो बच्चों को हमें एक सोशल लाइफ में करना है, जैसे कहते हैं बच्चा, कुछ बच्चे बहुत वो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चे को सिखानी है. जैसे बच्चा होता है अपने परिवार में, दादा दादी नाना नानी भाई बहन जितने भी हैं उन सबसे मिलवाइए, उनसे बात कराइए, बच्चा अपने आप ही होने लगेगा. दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते.
0: कि डिफरेंट स्पून फीडिंग करते
2: हैं. यस, स्पून फीडिंग नहीं करना है बच्चे को, अपने आप इसको नर्चरिंग केयर कहते हैं बेसिकली हम, कि बच्चे को इनिशियली 5 इयर्स तक तो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उससे बच्चे को सीखने दीजिए, आप कुछ मत सिखाइए. आपने देखा होगा बेंगलोर में एक इंसिडेंस हुआ था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था, शादी के बाद सुसाइड कर लिया. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, सोशल प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों पर बच्चे को तैयार नहीं किया. तो बच्चे को संस्कार से केवल एजुकेशन नहीं देना है आपको, बल्कि इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करना है कि हाउ टू हैंडल द डिफरेंट सिचुएशंस.
0: कभी कभी हैंडल मतलब जो होता है ना, उसी सिचुएशन को हम सिखा नहीं सकते हैं, वो अपने आप ही हैंडल करना होता है, और वो शुरुआत ही होता है नींव से. अगर नींव मजबूत होए तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकेगा.
1: लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी काम होगा तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते.
0: सब
1: तो हाँ किया जी, वो कैसे करे कि क्योंकि बच्चों को बचपन से देखा जाए तो स्कूल भी जाना है, उनको खेलना भी है, उनके पास अपने ही बहुत काम है, तो वो हर चीज़ को आराम से हैंडल कर ले. उसके लिए क्या करें, पेरेंट्स क्या करें और बच्चे क्या करें, इस पर हम बात करेंगे. लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर. हेलो.
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मैडम, मेरा सवाल ये है कि अगर आजकल के जो मदर हैं वो उनका खुद का ही लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे ही है, डिसिप्लिन नहीं है, ना हेल्थी हाइजीन का है, बच्चा भी अगर देर से उठता है और देर से सोता है तो मतलब बच्चा भी है, मतलब ब्रेस्ट फीड पे भी है, तो क्या है, बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो यंग मदर्स एंड फादर है, अब ये है कि वो बड़ों की एडवाइस पर तो उनका कोई वो लेती नहीं है, मतलब दे डिपेंड ऑन इंस्टा रील्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से एडवाइस ले लेते हैं वो.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: तो ये मतलब बच्चे के लिए कितना मतलब डेवलपमेंट में मतलब बाधा कर सकता है?
1: जी पहले डॉक्टर तोमर आप बताइए कि फिजिकल डेवलपमेंट पे कैसे बाधा करेगा?
2: दो चीज है सर, आपने जो बताया है कि पहले तो ये कि माँ है आजकल रील देखती हैं या इंस्टा पे है, तो एक चीज़ है हमारे यहाँ समाज में कभी भी पहले ये बैन हुआ करता था कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब से आई है तब से कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान देने के लिए रील बना लेता है, उसे कभी भी फॉलो निकलना है. खासकर हेल्थ के बारे में आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह के नहीं लेनी है. जो माँ है वो भी किसी का बच्चा रहा होगा, तो जब हम समाज को इस तरीके से तैयार करेंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी कल को जाकर के माँ बनेगी तो उसको डेफिनेटली वो पता रहेगा. और जहाँ तक स्क्रीन का टाइम है, बच्चों की हेल्थ पर असर तो पड़ता ही है. प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, और लाइफ साइकिल इज़ इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो के और 10 बजे उठ रहे हैं तो आपका हेल्दी स्लीपिंग हो गया, ये नहीं है. दिस इज

0: वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्लीपिंग पैटर्न एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि पहले होता था। जो लाइफ है हमारी वो सन के अराउंड मूव करती है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो उसी के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करनी है।
1: इस पर क्या जी आप क्या कहेंगी?
2: हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी डॉक्टर साहब जी जो बोला कि ये बच्चे आजकल टाइम से नहीं सोते हैं और बहुत रात तक लैपटॉप पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो वो ब्लू लाइट्स आती है आंखों में स्क्रीन से, वो आपके सर्कैडियन साइकिल को अफेक्ट करता है। सर्कैडियन साइकिल क्या है? सोना और जगने का साइकिल। अब जब बच्चा 4 बजे सो रहा है, सपोज रात के 4 बजे सो रहा, तो सुबह उठते हुए मुश्किल होगी, और जैसे ही मुश्किल होगी सुबह उठते हुए उसको नींद ड्राउजीनेस फील होगा थ्रू आउट द डे, बट उसको कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, काम तो करना है, तो ओवर द पीरियड वो सुस्त बनता जाएगा, लेजी लथार्जी आता जाएगा। तो ये माँ बाप को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है कि बच्चे तुम टाइम से सोओगे, टाइम से खाओगे, पहले ज़माने के तरह, तो ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे तो ही बच्चे ठीक हो पाएंगे। तो माँ बाप पे फिर आ जाता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की आजकल बहुत ज़रूरी है। और इंस्टा पे तो आजकल सारे टाइप के रील्स ऐसे होते हैं कि एडिक्शन हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: जी, इसी पर एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे? हेमचंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य, उत्तराखंड।
0: देखिए सर, लाइफ को चलाने के लिए आपको कोई डाइट चार्ट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कल्चर में था, आपको सबको पता होता है कि हेल्दी फूड क्या होता है। स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, नेचुरल खिलाइएगा, प्रोसेस फूड नहीं देना है, जंक फूड नहीं देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, वो अच्छे से खिलाइएगा और मानसिक रूप से उनको जो है सपोर्ट कीजिएगा, तो आपका बच्चा हेल्दी होगा।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, अगर बच्चे घर पर तो दंगा करते हैं लेकिन बाहर जाकर और ज़्यादा दंगा करते हैं और डिमांड करते हैं मोबाइल दो, इसके लिए क्या किया जाए, प्लीज़ कृपया निर्देशित करें। किया जी क्या कहेंगे? ये लिखा है डॉक्टर शिवराज सिंह ने।
2: बच्चे की उम्र क्या है, ये बहुत ज़रूरी है,
1: ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो अगर हम ये बच्चा है तो मेरे ख्याल से 10
0: डेफिनेटली बच्चा
1: कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता
2: है, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दे, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
1: दंगा करते हैं और बाहर जाके और करते हैं,
2: हाँ, तो उनके जिद पे ना आए ना, यही तो है पेरेंटिंग।
0: बच्चे को जो है आपको शुरू से ही कंट्रोल करके चल रहा है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चे को आपको पैम्पर नहीं करना है, आप बच्चे को संस्कार दे रहे। एक सिंपल सी, एक छोटी सी, आपको हमेशा याद रखनी बच्चों के मामले में, कि बच्चा आपका कच्ची मिट्टी होता है,
2: ठीक,
0: और आप जो है कुंभकार हैं, आप कैसा शेप देना चाहते हैं, कहाँ आपको अपने हाथ को टाइट करना है, कहाँ आपके हाथ को लूज करना है, कितना सुंदर शेप आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, पेरेंट्स कच्ची मिट्टी हो गए हैं,
2: ठीक,
0: बच्चे उसको मोल्ड कर रहे हैं, जिद किया तो वो तो बच्चा आपका एडिक्टेड हो चुका है। बहुत से बड़े अडल्ट होते हैं, वो ड्रग्स के लिए जिद करते हैं, कोई ड्रिंक के लिए जिद करता है, तो अल्टीमेटली आपको समझना होगा।
1: जी, जैसे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है, तो हम उस पर बात करें, पेरेंट्स जहाँ इतना बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो हफ्ते में एक दिन क्या उनको बच्चों के साथ बिताना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्टिविटी करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए? डॉक्टर तोमर आप बताइए।
0: देखिए, अक्सर ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, और बहुत परेशान होते हैं अक्सर मम्मियाँ, तो उसके लिए सिंपल है कि जब भी आप बच्चों को खाना खाते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाना है, और अक्सर फैमिली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बिल्कुल डिजिटल फ्री एरिया होना चाहिए जिसमें आपको बच्चे के साथ बैठ के खाना खाना है। चलते चलते मैं एक आपको बड़ा छोटा सा मंत्र देकर जाता हूँ कि एक परिवार होता है, परिवार सुखी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, तो उसके लिए हमारे बहुत पहले से एक कंसेप्ट हुआ करता है परिवार के लिए क्या जरूरी है, कि यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है, उसका मतलब ये है। तो घर में जो आपके लेडीज हैं, जो महिलाएँ हैं, बच्चों की माँ हैं, दादी हैं, आप उनको प्रॉपर इज्जत देंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, झगड़े कम होंगे, खुशियां रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे।
1: और क्या जी आप क्या मैसेज देंगी जाते जाते हमारे श्रोताओं को, जिससे कि पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है और बच्चों के लिए, जिससे उनका मानसिक विकास सही ढंग से हो?
2: हाँ जी, बच्चों के लिए है कि बच्चे जो माँ बाप बोले वो करें, और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को एक्सेप्ट करें अनकंडीशनल, उनकी सुने, उनके साथ रहे, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ साथ सारे कार्य करें ताकि बच्चे भी खुश रहे, और जादू की छप्पी बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ, इसे ही कहते हैं फैमिली बॉन्ड। अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा होगा, आपस में प्यार होगा, तो सब आपस में खुश रहेंगे। श्रोताओं, अगर परिवार में संवाद, समानता और सहयोग हो तो हर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर आगे बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यही संदेश देता है कि बच्चों का बेहतर कल एक बेहतर परिवार से शुरू होता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों डॉक्टर MS तोमर और KR चटर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू। थैंक यू।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के

में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल संशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमागुमी को हराया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत वितेदरसन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंक तालिका में पांचवें स्थान पर चेन्नई ये मैच जीतकर शीर्ष चार में प्रवेश करना चाहेगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और जानने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। यह हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया। हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने

का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सोशल मीडिया का अनुभव करते समय उत्साहित महसूस करना, उस भावना में इतनी गड़बड़ी यानी इंग्रोस्ड होने के कारण व्यक्ति उस समय चेतना कॉन्शियस को खो देता है। सोशल मीडिया लत के कुछ शारीरिक लक्षण है दोस्तों, धुंधली दृष्टि यानी ब्लर्ड विजन है, उचित नींद नहीं लेना और सिर दर्द का अनुभव, सोशल मीडिया से कनेक्ट होने या पहुंचने योग्य नहीं होने पर चिंतित महसूस करना, प्रतिदिन गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता, इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना, आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर्स सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और उसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं, इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो ये बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखें। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में किए गए अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर, एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है, जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है। कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण हैं: आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग अल्कोहल जितना खतरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। With this very useful and thought-provoking information about social media addiction,
दिस इज चेतन।

I'm signing off for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

मैं कह जी सोने मकड़ो की हाल चाल है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर यू आर विद मी शालिनी, क्योंकि शो शुरू हो चुका है अल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, शो का नाम ही है आज का, स्पेशल शो है हमारा फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के आते आते ना आपको जो है वीकेंड वाला बुखार चढ़ने लगता है। मैं कह जी कितने जा रहे हो, तो सीए बता दो। लेकिन खबरदार, जो मेरा शो सुने भी ना गए, समझ में आ गई? या तो सुनते सुनते जाइए या सुनकर जाइए, ऐसा नहीं चलेगा। इस गाने के बाद बात करेंगे बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ, ठीक है जी?

बट्टे ऐसे थोड़ी होता है, चांद की चूड़ी कैसे बनाओगे, ऐसे जूड़े बात ही नहीं करनी किसी से, ठीक है? मैं सच बता रही हूँ आपको, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं क्या Alpha Jen, thank God it's Friday, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ की, और वो आप कैसे कर सकते हैं यही बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप 102.6 के अलावा ना हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं, और अगर OTT का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आइए हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म पर। इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं मुद्दे की असली बात पर। अगर आपको अपने एकेडमिक्स और सोशल लाइफ को बैलेंस करना है ना, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेने जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको ना डिजिटल कैलेंडर बना लेना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटली तो बहुत साउंड है ही, है ना? तो आपको डिजिटल कैलेंडर बनाइए, या फिर आप डायरी भी रख सकते हैं जिसमें आप क्लास, स्टडी, असाइनमेंट और दोस्तों के साथ मस्ती के टाइम का ना पहले स्केड्यूल कर लें। लेकिन इसमें जो मस्ती का जो परसेंटेज है ना, वो थोड़ा कम रखिएगा, नहीं तो मार्क्स भी ना उसी तरह से आएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है, गाना तो मैं चला ही रही हूँ।

सिर्फ मस्ती की पाठशाला से काम नहीं चलेगा, आपको परसेंटेज अगर लाने हैं, मार्क्स लाने अच्छे ना, तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मेघा जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ चालिनी, और शो चल रहा है क्या अल्फाजन? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो ये कहते हैं ना कि आपसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैं उसका हल लेके आई हूँ आपके पास। बैलेंस करने के लिए एकेडमिक्स को विद सोशल लाइफ कैसे कर सकते हैं आप, वो बता रही हूँ मैं आपको। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना आपने? अगर नहीं सुना तो आप सुन लिया होगा। 25 से 30 मिनट इसमें पढ़ाई करनी होती है, और फिर 5 मिनट का ना छोटा सा ब्रेक लेना होता है। छोटा सा मतलब समझे ना, बहुत ही छोटू सा ब्रेक लेना होता है, जिसमें आप स्नैक्स एंड वेफर्स खा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक या फिर थोड़ी सी चिट चैट कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। लेकिन हाँ, इतने सारे स्नैक्स और वेफर्स मत खा लीजिएगा आप कि फिर आप ये कहें कि साइड में गया पोमोडोरो, मैं तो सो रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल जो आपने यहाँ पर पोमोडोरो

बस करिए, इतना ज्यादा कहेंगे बार बार ना तो हंसने की जगह रोने लगेगी और फिर गुस्से में आके ना आप समझ सकते हैं ना ये नहीं करने का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ चालनी और शो चल रहा है क्या अल्फाजन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम बात कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करें सोशल लाइफ के साथ, इसकी बात हो रही है और यही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिलहाल इतनी सारी बातें जो हमने आपसे की है ना उनको बहुत ध्यान से आपको नोट भी करना है। ये सिर्फ नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, दो कान आपको इसलिए नहीं दिए गए, इस तरह के काम नहीं करने आपको, ठीक है। आप ना अपनी जो सोशल सर्कल है उसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, उसको भी, मेरा मतलब सोशल सर्कल से नहीं, आपकी सोशल लाइफ से, यानी कि सोशल मीडिया से नहीं है। सोशल मीडिया भी ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा जो आप रील स्क्रॉल करना चालू करते हैं और फिर बंद ही नहीं होते ना 3-4 घंटे तक, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। मैं आपकी सोशल लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, उनकी बात कर रही हूँ। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके साथ दिन में हुआ उनसे बता सकते हैं, खुशी के मोमेंट शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टाइम का भी, कि एक बार चालू हुए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेना। जैसे कि आप पहुंची अपनी फ्रेंड के पास और कहती है सुनना ये वाली तूने कुर्ती कितने की ली, पता है मैं तो इतनी की लाई थी, अरे यार इसके साथ ना वो वाले इयररिंग्स ना बहुत अच्छे लगेंगे। और ऐसा करते करते आपको, आप 3 बजे दोपहर में गई थी और रात के 3 बज गए, बताइए ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे आप, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ना मैनेज करना पड़ेगा। और वही बता रहे हैं हम आज यहाँ पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, शो चल रहा है अल्फाजन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और मैं शालिनी आपको बता रही हूँ आज कि आप कैसे अपनी एकेडमिक्स को बैलेंस करें सोशल लाइफ के साथ में, ठीक है जी। अब इंजॉय करते हैं ट्रैक, उसके बाद फिर से मिलते हैं, जाइएगा नहीं बिल्कुल।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

भैया जी बस करो, हद ही होगी। अब तो है आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया था, आप तो हार ही नहीं मान रहे, फर्श तोड़ के ही मानेंगे आप आज है। ऐसा मत करिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूँ मैं शालिनी, और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी एकेडमिक्स को जो है वो सोशल लाइफ के साथ बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आप ना क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप जो है वो अपनी एक जगह जो है वो निश्चित कर लें, कोई स्टडी एरिया जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो। पार्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ पे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। ढल गया दिन, हो गई शाम, है ये वाला नहीं। अब दूसरी बात ये है कि आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर थोड़ी शांति हो और पढ़ाई का माहौल हो, जहाँ पर और भी लोग पढ़ रहे हों, जैसे कि लाइब्रेरी। वो तो आप जानते ही होंगे कि भूल गए, इतना मत खोजा करिए गानों में, लाइब्रेरी नाम की जगह है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप उसे, ताकि आपका ध्यान ना भटके। और हाँ, ये जो आप हर पार्टी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है ना, देखना मैं कैसी लग रही हूँ, ये नहीं करना आपको। आपको हर समय तैयार नहीं रहना है, आपको आपके फ्रेंड चाहे कितने भी क्लोज हो, अगर आपको बार बार मना करने पे भी आपको जाने के लिए कह रहे हैं ना, तो उनसे बच के रहिए। ये नहीं करना, मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है वो, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो भी नहीं आएगी ना, फिर मुझे शॉपिंग जाना होता है, मैं किसके साथ जाऊंगी फिर। तो आपको जाइए ना अकेले। अगर ऐसे दोस्त हैं जो आपको पढ़ाई से दूर भगा रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके शॉपिंग में भी साथ जाएं और आपका पढ़ाई में भी साथ दें। सही समय पर सही चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, अभी ज्ञान की बातों के बाद ना एक अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर देती हूँ, और उसके बाद और भी बातें यहाँ पर करने के लिए। एंजॉय कीजिए 102.6 विद मी शालिनी, आकाशवाणी रेनबो, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक डियर्स, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, क्योंकि शो चल रहा है कौन सा, ये तो आप जानते ही होंगे, है कि नहीं? अल्फा जन चल रहा है शो, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, नाम है शो का, आज स्पेशल शो है हमारा फ्राइडे का, तो एंजॉय कर रहे हैं आप, है कि नहीं? बताइए, आपकी भावनाएं पहुंच जाती हैं हम तक। मैं बात कर रही हूँ आपसे आज की बैलेंसिंग एकेडमिक्स विद सोशल लाइफ की, कि कैसे आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स को भी और सोशल लाइफ को भी। तो उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो अब इन सब पढ़ाई के बाद ना, इन सारे असाइनमेंट्स को बनाने के बाद में आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपकी नींद भी है। आपको नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आप ये सुनकर बहुत खुश हो चुकी है ना, और अपनी मम्मी के सामने आगे मटका मटका के करी देखा, अब तो रेडियो पे भी लोग बोलने लगे कि 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैंने 12 घंटे तो बोला ही नहीं, कब बोला है मैंने? मैंने कहा कि पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। तो आप उनसे ये मत कहिए कि अब मुझे 9 बजे से पहले मत उठाना। आप 6 घंटे भी सोकर आराम से एकदम फ्रेश रह सकते हैं, एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ये सबके लिए अलग अलग है। कोई 6 घंटे सोकर भी एकदम फिट रह सकता है, एनर्जेटिक रह सकता है, कोई 8 घंटे सोता है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल 6 घंटे की नींद काफी होती है, और अगर आप इससे भी कम नींद लेकर एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं ना, तो मेडिटेशन आपके बहुत काम आ सकता है। मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग, इट्स ट्रू। आजमाइए थोड़ा सा। और आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे क्या है ना, आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, और आपका जो टेंशन है, थोड़ा सा तनाव है, वो कम होगा। और बहुत जो आप ना किताबों के बारे में सोचते रहते हैं ना, मार्क्स के बारे में सोचते रहते हैं, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी आपको। तो आपको अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है और पढ़ाई भी करनी है, दोनों काम करने हैं आपको। और क्या करना है आपको, आपको सुनना है आकाशवाणी रेनबो। ये कैसे भूल सकते हैं आप, बताइए।

Hey, Zuby, Derby, Derby, Derby. ये सुनकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन इसका क्या मतलब है ना, ये मुझे नहीं पता है। आपको बताओ तो बता दीजिएगा। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं शो अल्फा जेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और आपके साथ हूँ मैं, कौन? शालिनी, पहचान लिया? कितने अच्छे हैं आप, बता देने के बाद ही पहचानते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर कि आप अपने एकेडमिक्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं सोशल लाइफ के साथ। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें की और आपने देर से ट्यून इन किया ना, तो मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, बता रही हूँ, आगे की बात बता देती हूँ। आप अपने जो नोट्स और असाइनमेंट्स हैं ना, उसको स्टडी मटेरियल को अपने ना वो बहुत मैनेज करके रखें, उसको व्यवस्थित करके रखें, और ताकि जो आखिरी समय पर जो अफरा तफरी होती है ना, भागम भाग मचती है, कहाँ गया, मुझे नहीं मिल नहीं रहा, आपने बनाया नहीं था, आपको तो याद ही नहीं है, ये मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो जिस दोस्त पर, जिस फ्रेंड पर आप भरोसा करके बैठे ना, कि वो आपको लास्ट मिनट में सारे नोट्स दे देने वाला या दे देने वाली है, तो हो सकता है वो आपको मना कर दे और फिर आप भीगी बिल्ली बन के घूमेंगे सब तरफ, क्या हाल होगा आपका, सोचिए, मुझे देखा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप उससे बचिए और अपनी सारी चीजें मैनेज करके रखिए। दूसरी चीज, कॉलेज लाइफ जो है ना, वो सिर्फ रटने का नाम नहीं है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी जुबी डुबी एक्टिविटीज, इसी तरह से फन एक्टिविटीज करनी है आपको, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आपको बनाने हैं वहाँ पर, खूबसूरत यादें वहाँ की आपको, आपके लाइफ लॉन्ग जो है आपके साथ रहेंगी वो। तो आप पढ़ाई को लेकर परेशान मत होइए, उसको भी एंजॉय कीजिए और कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, इसका बैलेंस बनाना है आपको, तो आप दोनों चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल एंजॉय करिए ये अगला वाला ट्रैक, क्योंकि अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि टाइम हो चुका ना, जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं शो क्या अल्फा जेन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। चलिए मैं अब चलती हूँ, ठीक है जी, ख्याल रखिए, गाना सुनी जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया

0: भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discuss energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as a brother, Mr. Modi praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict. On the second leg of his visit, the Prime Minister will arrive in the Netherlands this evening. Thereafter, he will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Union Defence Minister Rajnath Singh laid the foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Program Facility at Puttaparthi in Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. Addressing the gathering, Defence Minister Rajnath Singh stated that the newly launched defence projects would strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for the youth. The Advanced Medium Combat Aircraft Program Facility will serve as the integration, development and flight testing hub for India's indigenous 5th-generation stealth fighter aircraft program. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today chaired a high-level review meeting to assess India's preparations for the Commonwealth Games 2026, scheduled to be held in Glasgow, Scotland. He reviewed athlete preparation, training, logistics, welfare and coordination for India's Commonwealth Games 2026 campaign. The meeting also reviewed the progress of inter-ministerial coordination efforts being undertaken by the Sports Secretary. The Madhya Pradesh High Court today declared the Bhoj Shala complex in Dhar district a Hindu temple. The court said that the temple of goddess Saraswati existed here and the site was a centre of Sanskrit learning. The court cancelled the earlier order that

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2000

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে আইনুল হক আৰু তেওঁৰ সংগীবৃন্দৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত জিকিৰ শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकर षड्विंशत्यधिक द्विसहस्र तमे वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य एकविंशति दिनांके षड्विंशत्यधिक द्विसहस्र तम वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च षड्दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानं एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिम एशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार कर नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदु का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने
1: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन सम्बोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत्

0: साई राजरंकिरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुष युगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। इतः पूर्व गतरात्रौ धर्मशाला नगर से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलम षट स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: बातरी पासते पुनर उभति आहिछो जुबवाणीर स्टुडियोर मजियालै। आमार अनुष्ठान प्रसारित हैछे मीडियम एफर 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज आरु डीआरएम फ्रिक्वेन्सीर 1026 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी गुवाहाटीर प्रागज्योतिषपुरर परा। प्रिय श्रोता, इतिया आगबढ़ाइछो लोकभवन अखमर सम्मिलन कक्षत आयोजित हुआ चंद्रमोहन पाटवारीर शपथ ग्रहण अनुष्ठानटीर एटि अनातार प्रतिबेदन। प्रतिबेदनटि जुगुताई आगबढ़ाइछे पम्पी बैसय।
2: নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি দিনৰ 11:30 বজাত লোকভৱন অসমৰ সন্মিলন কক্ষত আয়োজিত এটি অনুষ্ঠানত অসম বিধানসভাৰ সদস্যৰূপে শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয় শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই সন্মিলন কক্ষত আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু অসম সংগীতেৰে অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণি কৰা হয়।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है।

0: খজানী অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কণ্টেক্ট পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 চামাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট নাইট আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
4: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती

0: है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में

0: इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. breaks Foreign Minister's call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends three IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met Department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags two gold, one silver and two bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic two gold and seven silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
4: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है. ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा.
3: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
5: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Sammaan Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaDAC and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
3: Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Speaking to Akashvani, Ambassador Deepak Mittal said, India and the UAE have taken several strategic decisions during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi to deepen cooperation in energy, technology, investment and trade.
6: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements, long-term decisions to deepen India's energy security and to deepen energy partnership between India and the UAE. The discussions between the leaders today also touched upon technology, the decisions to set up 8 exaflop supercompute facility in India, which will be based upon the Cerebras chip technology. That will form a very important part of our AI mission. Associated with was also the UAE decision to also partnership in developing the ship repair cluster in the Vadina in India.
3: Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening the shared planet and futures such as climate change. Briefing media New Delhi after the conclusion of BRICS foreign ministers meeting, Secretary Economic Relations and Minister of External Affairs Sudhakar Dalela said, all the BRICS members and partner countries were highly appreciative and supportive of India's chairship priorities under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
7: All the